जमत ना त्रास, जमत ना त्रास, गौर अमर गुरु श्री सत, गौर अमर गुरु श्री सत।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपता असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दत्ता और असंख सूर मुह पक्षार।

हर शंख मूर्खंध हर शंख चोर हराम कोर शंख मरकर जाहि जोर शंख गड़बड़ हत्या कुमाह शंख पापी पाप कर जाहि शंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख कमलेश मल पख खावे असंख निंदक सर कर है पार नाथ नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख ऐ सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन्हें लिखे तिस सिर नाहि जे फुरमाए

चत्रचक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र खाले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शांद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सयादि सयद्र सयकृ सय भगवती छंद त्वे प्रसाद कहते कि आशिज दिशा देसा है कि आप पैसा है कि आगन कर्म है कि आप अन परम है कि आप झलोक है कि आदित शोक है कि अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रभा है धर्म तुझा है कि आशोक भरने के सर्वा भरने के जागतम कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपह है कि आदादेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने

कि सर्वंगदनी है, एक सर्वत्र माननी, एक सर्वत्र दानी, एक सर्वत्र गौण है, एक सर्वत्र पौन है, एक सर्वत्र देश है, एक सर्वत्र पेश है, एक सर्वत्र राज है, एक सर्वत्र साज है, एक सर्वत्र दीन है, एक सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जा हो, सर्वत्र भा हो, सर्वत्र देश है, सर्वत्र भेस है, सर्वत्र काल है, सर्वत्र पाल है, सर्वत्र हंता, सर्वत्र गंता, सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, सर्वत्र सुख है, सर्वत्र पोख है, सर्वत्र त्राण है, सर्वत्र प्राण है, सर्वत्र देश है, सर्वत्र भेस है, सर्वत्र मानी है, सदैव प्रधानी है, के सर्वत्र जापी है, सर्वत्र थापी है, सर्वत्र पान है, सर्वत्र मान है, सर्वत्र इंद्र है, सर्वत्र चंद्र है, सर्वंकली में के परम फही में के आकल आला में के साहिब कला में के हुस्नुल वजू है, तमाम रुजू है, हमेश हो सलाम में सली खत्म दाम में गनी मुल शिकस्त है, गरीब उल परास्त है, बेलंद उल मकान ने, जमीन उल जमान ने, तमीज उल तमाम में रुजू उल निदान ने, हरीफ उल अजीम मेरा जायक यकीन ने, अनेक उलतरंग है, भेद है, अभंग है, अजीन निवास है, गनी मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रवाह है, सुजुक्त सुधा है, सदैवंग स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैव लया काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गम त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भाग्य सो सर्वानुराग है, त्रिभुत स्वरूप है, अशिज है, अछूत है, के नरकम प्रणास है, प्रधीर प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, भरम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है,

सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंधर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता सर्वलक्षणत्वे प्रसाद नमो नरकनाशेश देवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथम परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं शरीक है।

गौतमित्य उदार जलथर अमण दिशुषपण जलथर महन दिशुष्मियन भवनास्त्रुरासा जान बाहुई के सदा ओंकार याद कथनियनाद खल खंड गयाल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नामन छिजगात अजिज न बात हन झंझगात नरंज बात अन टुट भंडारण ठट अपार अडीठ धर्मत ढीठ कर्म अणभ्रण।

अमृत है। अजवाकृत है अमृता अमृत है, निर्णायक है, खलकायक है, विश्वंपन है, करुणालय है, नृपनायक है, सुरपायक है, पपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस की जस है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राज, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सुताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पार पाने।

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाथ फिरे हो नीत साथ समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो।

हमरी करोहा दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दोष सबै तुम का बहुआ भाव दै मोहि बचाव सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन का आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारी मारिये

आप अपनी बुद्ध है जेती बरन भिन भिन तोहे देती तुमरा लखाना जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूपा नूप सुरूपा रंग भयो राव कही पूपा इंड जेर जसे तिज की नी उत्पुज खान बौर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिम भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंपव या जुगा स्वरूप सुयंपव।

खड़ग केत में शरण तिहारी आप हादय ले हूँ बारी शर्म ठाउर मोह सहाय दुष्ट दोखते ले हूँ बचाय।

कृपा करे प्यार या कर कृपा किल वे कट्टे ज्ञान अंजन सार अंदरो जिनका मोह तुटा तनका सब सच्चा सवार या कह नानक यो आनंद है आनंद गुर ते जाणिया।

फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुर शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो मिन सतगुर मुक्त ना पाए आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो।

मायाग्न सभी को देही करते खेल चाया जातस पाणा ता जम्मिया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोय उपजै भाव दूजा लाया।

कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए। सोग

कि कर्म कमाया तुझ शरीरा जातु जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पू

हर बिन यवर न देखो कोई, हर बिन यवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया विस संसार तुम देख दे। एह रूप एह हर का रूप है, हर रूप नदरी आया गुर प्रसाद।

राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियां कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई होए सहाए दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ

हरे अंतर तू वसा, तू वसे मन माहे सहजे रस रसा, मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय समाल प्रीतम आपना, जे चलहे गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाणा ना ते सुरंग है, मरसी होए वेडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाह करे आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला, ज्यों आनन लोहा पाए पन कढ़ाइया, त्यों साकत जोनी पाए पवै पवाइया, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हो मैं आवै जाए परम भुलावना, रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आइया, मेल हित जिहर जाए सब दुख कमाइया, तू कर कर वेखे आप देह सुपाइया, तू देखे थाप ओ थाप दर भी नाइया, देही होव खाक पवन उड़ाइया, इहो किथै कर ओताक महल न पाइया, देहो दीवी अंध घोर कब मुहैया, घर मुसै घर चोर किस रुआइया, गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाइया, शब्द निवारी आग जोत दीपाइया, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाइया, सदा रह निकाम जे गुरमत पाइया, रात देह हर नाव मन वसाइया, नानक मेल मिलाए जे तुद पाइया, सूही महला पहला, मन हो ना नाम विसार एहन सत्याइया, ज्यों राखे कृपा तार तिवै सुख पाइया, मैं अंदले हर नाम लुकटी टोहनी, रहो साहिब की टेक न मोह मोहनी, रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पाओ पंजना, जन्मत ही दुख लागै मरण आए कै, जन्म मरण परवान हर गुण गाए कै, हो नाही तू हो है तुद ही साजिया, अपे थाप उथाप शब्द निवाजिया, देही पसम रलाए ना जापी कह गया, आपे रहे असमाए सो विस्माद पया, तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख दूर अंतर पी तू है, मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावै नानक दास सतगुर मत दे, राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां, एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद, नामै ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै, कोटि बदला जन्म गवाया, चीनस नाही आपै, गुरमुख होवै ता एक हो जाणै, हो मैं दुख न संतापै, बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे, स्यों लिवलाई शब्द चीने आत्म प्रगासिया, सहज रहया समाई, रहा गुरमुख गावै गुरमुख बूझै, गुरमुख शब्द बिचारे, जियो पिंड सब गुरते पुजै, गुरमुख कारज सवारे, मनमुख अंधा अंधा अंध कमावै, बिख खट्टे संसारे, माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे, सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए, साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए, सच्ची बाणी गुरमुख आखै, होमै विच हो जाए, आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए, गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचै रंगराता, गुरकै सहज सुभाए, मन मुख सत ही कूड़ो बोला, बिख बीजा बिख खाए, जमकाल भादा तृष्णा दाधा, बिन गुर कवन छुडाए, सच्चा तीर्थ जित सत सरनावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीत गुर सब दिखाए, तित नातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मलो, नामलो लगै ना लाए, सच्ची सिबत सच्ची सालाह, पूरे गुरते पाए, तन मन सब किछ हर एक तिस केरा, दुरमत कहन न जाए, हुक्म होवै ता निर्मल होवै, होमै विच हो जाए, गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अगन बुझाए, गुर तृष्णा अगन बुझाए, गुरकै शब्द राता सहजे माता, सहजे रहया समाए, हर का नाम सतकर जाणै, गुरकै पाए प्यारे, सच्ची बड़ियाई गुरते पाई, सच्चै नाए प्यारे, एको सच्चा सब है वरता है, वेला को विचारे, अपे मेल ले ता बक्से सच्ची भगत सवारे, सबो सच सच सच वरता, गुरमुख को ही जाणै, जमण मरना हुक्म वरता, गुरमुख आप पछाणै, नाम ते आए ता सतगुर पाए, जो इच्छा सो फल पाए, नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विचो आप गवाए, सूही महला तीजा, काया कामणे अत सवाल्यो, पिर वसै जिस नाले, पिर सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले, हर की भगत सदा रंगराता, हूं मैं विच हो जाले, वाह वाह पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर तेवजी साच समाणी, रहाओ
काया अंदर सब किश वसै, खंड मंडल पाताला काया अंदर।

दास हमारी जियो पिंडा सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तीन वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा वाहे गुरु कहो नानक सब तीन वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा वाहेगुरू बोलो जी वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू अरदास एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगर गुरुदेव अमरदास रामदास हुई सहाय

देविया ने जाने मारम सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरे आपे मेल एक भर में एक भगती लाए अपना की आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी नहीं लेप तिस पुन न पाप नानक का प्रभ आपे आप राम कली महला पांजमा किछो काज न कियो जान सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाप ताप सील नहीं धर्म किछो न जानो कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिंदु जावर न कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहो रिद न बुद्ध न सिद्ध परगास बिखे व्याध के घाव मैं वास करन हार मेरे प्रवेक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगनत जी का दाता जिसे जनावे तिन तू जाता जो पायो तिस तेरी आस सगल राधे प्रभ गुण तास नानक दास तेरे कुरवाण बेअंत साहिब मेरा मेहरवान राम कली महला पांजमा राखण हार ध्यान कोट पव खंडे निमख ख्याल सगल राधे जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीवन को दाता मेरा प्रभ पूरन परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहो ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट हिरदे जप परमानंद मन में पय आनंद तारण तारण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे अपहार सो मत सार जित हर सिमरीज है कर कृपा जिस आपे दीजे सुख सहज आनंद हर नाऊ नानक जपया गुर मिल नाऊ राम कली महला पंजमा सगल सियाण पछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों आसा मनसा पूरन होवे पावे सगल निदान गुर स्यों रहो दूजा नहीं जाने कोई सतगुर निरंजन सोए मानुक का कर रूप न जान मिले नि माणे माण गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान तान दरघे पावे मान गुर का वचन जप मंत एहा भगत सार तत सतगुर पहे दयाल नानक दास सद निहाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजमा होवे सोई पल मान अपना ताज अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जाप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मत निर्मल रहाओ एक की कर आस पितर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमशक हर पव जल उतरे पार देवन हार दतार अंत न पारा वार जाके कर सर्ब निधान राखण हार निधान नानक पाया हो निधान हरे हर निर्मल नाम जो जपे तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पांजमा दो लब दे सवार जाए नंदर गै हार हालत पालत तो दोए वड्याई अंत की बेला लय छुड़ाई राम के गुण गाओ हालत पालत होए दो में सोहेले अजहर्ज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन से सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम हो कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पहार पूरन तेरी होवे आस जम की कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनी जै नानक सुख सहज समीजै राम कली महला पंजमा
ਜਿਸਕੇ ਤਿਸਕੇ ਕਰ ਮਾਨ, ਆਪਣ ਲਾਹੇ ਗੁਮਾਨ, ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਤਿਸੇ ਅਰਾਧ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇ ਬਿਗਾਨੇ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਵੈ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਨੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਮਾਨ ਲਿਹੋ, ਬਿਨ ਮਾਨੇ ਰਲ ਹੋ ਵੇਖੇ, ਤਿਸਕਾ ਪਾਣਾ ਲਾਖੇ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਰਲੇ ਮਨ ਬੁਠਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਗੋਚਰ ਆਪ, ਆਠ ਪੈਰ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ, ਜਿਸ ਚੇਤੇ ਆਏ ਬਿਨ ਸੇ ਦੁਖਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਤੇਰਾ ਉਜਲ ਮੁਖਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਦਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗਣ ਨ ਜਾਏ ਕੀਮ ਨ ਪਾਏ, ਵੂਡਤ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਕਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਪ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਇਹੋ ਦੀਨੋ ਮੰਤ, ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਭੈ ਤਰਾਸ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ, ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਦੇਵਾ, ਕੀਮਤ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਅਲਖ ਪਿਹਵਾ ਰਹੋ। ਕਰਨ ਕਰਾ ਵਣਿਆਪ, ਤਿਸਕੋ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਪ, ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੀਤ, ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਤ ਪਾਰਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਤਿਸ ਬਨਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦਰਸਨ ਦੀ ਜੈ, ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ ਜਪ ਜਾਪ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਹਾ ਪਰਤਾਪ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਿਰਥਾ ਪਰਵਾਸਾ ਲੋਕ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਅਵਰ ਛੁਟੀ ਸਭ ਆਸ, ਅਚਿੰਤ ਠਾਕਰ ਪੇਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਣ ਗਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਰਹਾਓ ਤੁਮ ਹੀ ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਰ ਸਰਣ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਉਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਓਟ ਸਦੀਵ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਨੇ ਹੈ ਜੀਵ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਕਰਤ ਨਿਧਾਨ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਿਧਾਨ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋ ਵੀਜੈ, ਆਪ ਮਿਟਾਏ ਮਿਲੀ ਜੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਤਿਹਾਈਏ ਨਾਮ, ਸਫਲ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਕਾਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰਹੀਮ, ਅਲੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡ ਵੇ ਸੁਮਾਰ। ਓ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਖਾਲਕ ਰਵ ਰਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਰਹਾਓ। ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ, ਪਉ ਪੰਜਨ ਰਿਦ ਮਹਿ ਅਰਾਧੋ, ਰਿਖੀ ਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਪੂਰਨ ਸਰਵਤਰ ਮੁਕੰਦ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ, ਪੀਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਸੇਖ, ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ, ਕੁਰਾਨਕ ਤੇਵ ਤੇ ਪਾਕ। ਨਰਾਇਣ ਨਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ। ਵਾਸਦੇਵ ਵਸਤ ਸਭ ਠਾਏ, ਲੀਲਾ ਕਿਛ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਰਣੇ ਹਾਰ, ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਪਰਮ, ਏਕੋ ਹੱਲੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤਾਪ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਹਾਂਵਿਕਾਰ ਤਨ ਤੇ ਖੈ ਸਭ ਨਸੈ। ਗੋਪਾਲ ਕੋ ਜਸ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਰਹੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਨਾਸੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪਿਆ ਬਿਨਾਸੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਮਾਨੀ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਿਟੇ ਜੰਜਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਪਰਧਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਸਤਕ ਨਿਸਾਨ। ਦਾਸ ਕੀ ਰੇਣ ਪਾਏ ਜੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਸਤਕ ਲਾਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਪੇਟਤ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਨਦਰੀ ਆਵੈ,
कर कृपा पूरन भगवान रहाऊ। गुर के कीरत जपिए हरणाऊ, गुर की भक्त सदा गुण गाऊ। गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान। गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे न ब्यापे तृष्णा भुख। मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोबिंद पढ़ दे सब काजे। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर दाता दयाल बख्सिंद। गुर चरनी जाका मन लागा, नानक दास ते सपूरन भागा। राम कले महला पंजमा, किस परवासे बिचरे पवन। मूड मुगद तेरा संगी कवन, राम संगे तिस गत नहीं जाने। पंच पटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत। गुण गोविंद रविय दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहो। जन्म बिहानो अंकार यारवाद, तृप्त नावे विख्या साध। परमत परमत महा दुख पाया, तरे न जाए दुतर माया। काम नावे सो कार कमावे, आप बीज आपे ही खावे। राखण को दूसर नहीं कोए, तो निस्तरे जो कृपा होए। पत तुपनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को कीजे दान। कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, सरन गए नानक प्रभ तेरी। राम कली महला पांजमा, एह लोके सुख पाया। नहीं पेटत धर्म राया, हर धर गया सो बावंत। पुण गर्व नहीं बसंत, जाने संत की मित्राई। कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाओ। गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सभागा। संत की तुर लागी मेरे माथे, किल विख दुख सगले मेरे लाथे। साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध प्राणी। जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूठा। मिटाने को सब काल कलेश, जिस ते उपजे ते समय परवेश। प्रगटे अनूप गोबिंद, प्रभ पूरे नानक बख्सिंद। राम कले महला पंजमा, गौ को चारे सार दून। कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हसी प्रत पाले। अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे। वरन न साको वो गुण तेरे रहो। देसत मास न खाए बिलाई, महाकसाव छुरी सट पाई। कर्ण हार प्रभ हृदय बूठा, पाथी माछली का जाला टूटा। सूखे काष्ट हरे चलोल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप। अग्न निवारी सत गुरदेव, सेवक अपने लायो सेव। अकृत कणा का करे उद्धार, प्रभ मेरा है सदा ध्यान। संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरणाई। राम कली महला पंजमा, पांच सिंह राखे प्रभ मार। दस बघ्याड़ी लई निवार, तीन वर्त की चूकी केर। साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोबिंद। कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद रहो। दाज गै तृण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर। आनंद रूप प्रगट्यो सब तान, प्रेम भगत जोरी सुख मान। सागर तरियो वाचर खोज, खेद न पायो ने फुन रोज। सिद्ध समायो कट के माहे, करन हार को कुछ चार्ज नाहे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो काढ़ियो तो नदर निहाल। पाप पुन हमरे वस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली महला पांजमा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोह व्याप्या तोहे, कुदम करे गाडर ज्यों शैल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरणाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे सच तना रहो। ऊने काज न होबत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे। करे विकार जी रह कहताई, गाफल संग न तसुआ जाई। तरत तो अनक शल जाने,
कौड़ी कौड़ी को खाक सिर शाने, जिन दिया तिसे न चेते मोल, मित्या लोभ न उतरे सोल। पार ब्रह्म जब पै दयाल, इहो मन होआ सादर वाल, हस कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचे साच समाए। राम कली महला पंजमा, राजा राम की सरणाई, निरपौ पै गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रहो। जाके राम बसे मन माही, सो जन दूतर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, सो दास देसा काहे करे। जन्म मरण की क्लोकी काण, पूरे गुरु ऊपर कुरवाण। गुर परमेसर पेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मुखी उजल साचे दरबारे। आनंद करो तज सगल विकार, नानक हर जपि उतरो पार। राम कली महला पंजमा, ईदन से बैसांतर पागे, माटी को जल दे दिस त्यागे। ऊपर चरण तली आकाश, कट में सिंध की ओ परगास। ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमख न बिसरे जी भगतन के। आठ पहर मन ताको जाप रहाओ, प्रथमे माखण पाछे दूध, मैलू कीनो साबण सूध। पैते निरपो डरता फिरे, होंदी कौन होंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दिसे, सगले साज करत जग दिसे। ठगण हारियन ठगदा ठागे, विण वखर फिर उठ लागे। संत सभा मिल करो वख्याण, सिमरत सास वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गत होय। राम कली महला पंजमा, जो तिस पावे सोथिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभ बिन नाही आन बिया रहाओ। पुत कल तिर लक्ष्मी दिसे, इन में किछो न संग लिया। विखेठ घोरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्या गया। निंदा कर कर बहुत बिगोता, गर्भ जोन में किरत पया। पूर्व कमाणे छोड़े नाही, जमदूत ग्रस्यो महापया। बोले झूठ कमावे अवरा, तृष्ण न बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजया संत दुखन, दे बिना से महाखया। जिने निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर किरपा पार ब्रह्मया। राम कले महला पंजमा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई। जाका सिमरन व्यर्था न जाई रहाओ, दासन पेखत होए निहाल। जाकी तोर काटे जम जाल, चरण कमल बसे मेरे मन के। कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ। प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पत तू उदाहरण कृपा निधान। सदा सदा जाइए कुर्बान, निर्मल मंत दे जिस दान। तजे विकार बिन से अभिमान, एक त्याय साध कै संग। पाप बिना से नाम के रंग, गुर परमेसर सगल निवास। कट कट रव रया गुणतास, दर्श दे तहरो प्रभ्यास। नित नानक चितवे साचे अरदास। राग राम कली महला पंजमा, घर दूजा दोप दे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गावो राम के गुण गीत। नाम जपत परम सुख पाये, आवा गौण मिटे मेरे मीत रहो। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में हुए निवास। संत संगत में हुए उधार, नानक पवजल उतरस पार। राम कली महला पंजमा, गुर पूरा मेरा गुर पूरा। राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा रहो। एक राधो साचा सोए, जाकी सरन सदा सुख होए। नींद सुहेली नाम की लागी पूख,
हर सिमरत बिन से सब दुख। सहज आनंद करो मेरे पाई, गुर पूरे सब चिंत मिटाई। आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आप। राग राम कली महला पंजमा, पड़ताल घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नर नरे नमस्कार। जलन थलन बसुद गगन, एक एक ओंकार रहो। हरन तरन पुन पुने करण, नै गृह निरहारण। गंभीर तीर नाम हीर, ऊच मूच अपहरण। कर्ण केल गुण अमोल, नानक बलिहारन। राम कली महला पंजमा, रूप रंग सुगंध भोग। त्याग चले माया शले, कनक कामनी रहाओ। भंडार दर्व अरब खरब, पेख लीला मन सधारे। नै संग गामनी, सुत कलत्र प्रात मीत। उर्ज परयो परम मोहो, ए विरख शामनी। चरण कमल सरन नानक, सुख संत पावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग राम कली महला नौमा। ते पदे रे मन ओट लियो हर नामा, जाके सिमरन दुरमत नासे। पावै पद निर्वाणा रहाओ, बड़ पागे ते जन को जानो। जो हर के गुण गावै, जन्म जन्म के पाप खोए के। फुन वैकुंठ सुधावै, अजामल को अंत काल में। नारायण सोध्याई, जागत को जोगी सर्वांचत। सोगत छिन में पाई, नाहिन गुण नाहिन किछ विद्या। धर्म कौन गज कीना, नानक विरद राम का देखो। अवे दान तै दीना, राम कली महला नौवा। साधो कौन जुगत अव कीजै, जाते दुर्मत सगल बिनासे। राम भगत मन पीजै रहो। मन माया में उर्ज रहो है, बूझे नै किछ ज्ञाना। कौन नाम जग जाके सिमरे, पावै पद निर्वाना। पय दयाल कृपाल संत, जनता बे बात बताई। सर्ब धर्म मानो तै किए, जय प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निसवासर, मैं निमख एक ओर धरे। जम को त्रास मिटे नानक तै, अपनो जन्म सवारे। राम कली महला नौमा, प्राणी नारायण सोधले। छिन छिन औद कटे निसवासर, विरथा जात है दे रहाओ। तरनापो बिखियन स्यों खोयो, बाल पन अज्ञाना। बिरद पहो जू नहीं समझे, कौन कुमत उर जाना। मानस जन्म दियो जय ठाकर, सोते क्यों बिसरायो। मुक्त होत नर जाके सिमरे, निमक न ताको गायो। माया को मद कहाँ करत है संग, न कहूँ जाई। नानक कहत चेत चिंता, मन होय है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे। सोई दिन अर तप्त रहे, सात अरती जो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाव कैसे, जीवन तलब निवार। होवे परवाना करे तिंघाना, कल लखन विचार रहाओ। किते देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा। दाता धन करे तै नाही, महलो सार न बैठा। जे को सत करे सो छीजे, तप कर तप न होई। जे को नाव ले बदनामी, कल के लखणी। जिस कदारे तिसे कवारी, चाकर के डरना। जा सिकदारी पवे जंजीरी, ता साकर हथों मरना। आख गुणा कल आईए, तेहो जुग केरा रया तपावस। जे गुण देता पाइए रहाओ, कल कल वाली सरा निवेड़ी। कहाँ जी कृष्ण हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद थर्वण। करणी कीरत लहया, पत विण पूजा सत विण संजम। जत विण काहे जनेऊ, नावो तो वो तिलक चढ़ावो। सोच विण सोच न होई, कल परवान कतेव कुराण। पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया रहमान। कर करता तू एको जान, नानक नाम मिले वड्याई। एदों ऊपर कर्म नहीं,
जेकर होंदे मंगण जाइए फिर लामा मिले तही। राम कली महला पहला जग प्रबोधे मड़ी वधावे आसन त्या काहे सच पहावे। ममता मोह कामण हितकारी ना उदूती ना संसारी। जोगी वैस रहो दुबदा दुख पहगे कर कर मांगत लाज न लागे। रहो गावे गीत न चीने आप क्यों लागे निभरे परताप।

तृप्त नहीं तीज है। मन मुख जन में जन्म मरीज है, सतगुर पूछ संगत जन कीज है। मन हर राचे नहीं जन्म मरीज है, राम नाम बिन क्या कर्म कीजे। उंदर धुंदर पास तरीजे, तुर की सेवा राम रवीज है। नानक ना मिले कृपा प्रभ कीजे। राम कली महला पहला, अंतरी उत्पज अवर न कोई। जो कहिए सो प्रभ ते होई, जुगे जुगांतर साहिब सच सोई। उत्पत पर लो अवर न कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर। जिन जपया तिन ही सुख पाया, हार के नाम न लगे जम तीर रहो। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल। जे बा सोचे साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन में वैसे ढुगर स्थान, नाम विसार पचे अभिमान। नाम बिना क्या ज्ञान त्यान, गुरमुख पावे धर गै मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीर्थ परमस व्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किमे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई। जम परवा दोले सजाई, बिन नावे जियो बल बल जाई। जल वल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा। हठ निग्रह ना तृपता वै पीवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा। मन तन निर्मल अभिमान अभेवा, कर मिले पावे सच नाओ। तुम शरणागत सरहो सुभाओ, तुम ते उपजे पंक्ति पाओ। जप जापो गुरमुख हर नाओ, होमे गर्भ जाए मन पीजे। झूठ न पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं करवान। नानक गुरमुख तत् विचार, राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जामे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया। तन तन देखत गर्व गया। कनक कामनी स्यों हित बधाई, कि नाम विसारे परम गया रहो। सत जत सत संजम सील न राख्या, प्रेत पिंजर में कास्ट पया। पुन दान इसनान न संजम, साध संगत बिन वाद जया। लालच लागे नाम बिसार्यो, आवत जावत जन्म गया। जा जम तहे केस गह मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। एहनस निंदा तात पराई, हृदय नाम न सर्ब दया। बिन गुरु शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिन मैं वेस करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। इत्युत माया देख पसारी, मोह माया के मगन पया। करे विकार बिथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मे रोग महान दुख लागा, गुरमत लावो ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखे, साकत माने अभिमान पया। जिसते हो तन तन सो फिर लेवे, अंतर सहजा दुख पया। अंत काल किस साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आदि पुरख परम पर सो प्रभ, हर नाम रे दे ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा घर असराल पया। देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जाए ता तिने पठाए, चाले तिने बुलाए लया। जो कुछ करना सो कर रया, वक्षण हारे वक्ष लया। जिने होर चाख्या राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ सरन पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जान, हरख सोग ते विरकत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। राम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साच दृढ़ाया। साच शब्द रस लीना, मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना। एहनस रहे कलिब लागे, साचे देख पतीना राओ। रहे गगनपुर दृष्ट समय सर, अनद शब्द रंगीना। सत बंद को पीन पर पुर लेना, जेवा रंग रसीना।
मिले गुर साचे जिन राचे राचे किरत विचार पतिणा। एक मैं सर्ब सर्ब मैं एकाए सतगुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सरो प्रभ लखण न जाई। दीपक ते दीपक पर गास्या तेरे पवन जोत दिखाई, सच्चे तख्त सच मैली बैठे निरपौ ताड़ी लाई। मोह गया वैरागी जोगी कट कट किंगरी बाई, नानक सरन प्रभु की छोटे सतगुर सच सखाई। राम कली महला पहला औहठ हस मड़ी कर छाया तरन गगन कल तारी। गुरमुख कीती शब्द उधारी संत रहाओ, ममता मार मोमे सोखे तेरे पवन जोत तुम्हारी। मनसा मार मने मैं राखे सतगुरु शब्द बिचारी, सिंगी सुरत नाहद वाजे कटकट जोत तुम्हारी। परपंच वेण तही मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी, पंच तत् मिलहन सदीपक निर्मल ज्योत अपहारी। रब सस लौके तन किंगरी वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन हो दो लख घम अपहारी। काया नगरी इह मन राजा पंच बसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा दल करे गुणकारी। काल विकाल कहे कह बपरे जीवत मोआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश सिक मूरत आपे करता कारी। काया सोध तरे पव सागर आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी। आपे मेल लहे गुरदाता आपे मेल लहे गुणदाता, होमे तृष्णा मारी। त्रै गुण मेटे चौथे वरते एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हिरदे एक मुरारी। मनु आस्तर शब्दे राता एहा करणी सारी, वेद वाद न पखांडे उदो गुरमुख शब्द विचारी। गुरमुख जोग कमावे उदो जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे उदो जोग जुगत विचारी। माया मोह पव जल है अब दो शब्द तत् कुल तारी, शब्द सूर जुग चारे उदो बाणी भगत विचारी। एहो मन माया मोया उदो निकसे शब्द विचारी, आपे बख्शे मेल मलाए नानक सरण तुम्हारी। राम कली महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरमे दियां मुंदरा कन्नी पाई जोगी खिंता कर तू दया, आवन जान विभूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लया। ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे, हर स्यों रहे लिबलाए रहाओ सत संतोख पत कर चोली। जोगी अमृत नाम पुगत पाई, ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई। मन दृढ़ कर आसन वैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई। काया नगरी मैं मंगण चढ़े जोगी ता नाम पल्ले पाई, इत किंगरी ध्यान न लागे जोगी ना सच पल्ले पाई। इत किंगरी शांत न आवै जोगी अभिमान न बिचों जाए, पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी इहो शरीर कर डंडी। गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन विद तृष्णा खंडी, हुक्म बूझे सो जोगी कहिए एक स्यों चित लाए। सहसा तोटे निर्मल होवे जोग जोग तिब पाए, नदरी आपदा सब कुछ बिन से हर से ती चित लाए। सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एह सोजी पाए, एहो जोग न होवे जोगी जे कटंब छोड़ पर पवन करे। ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड़ा तृष्णा माया, अनेक जतन पेख करे जोगी जोगत जोग जोगत सो पाए। अनेक जतन पेख करे जोगी रोग न जाए गवाया, हर का नाम मुख दहन जोगी जिसनो मन बसाए। गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग विखम है जोगी
ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਵੇਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਬਿਣ ਵਜਾਏ ਕਿੰਗਰੀ ਵਾਜੇ ਜੋਗੀ, ਸਾ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜੋਗੀ, ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਰਹੋ ਸੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖੀ, ਉਪਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ। ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੇ, ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਖਾਈ। ਸਦਾ ਹਯੋਰ ਦੂਰ ਨੈ ਦੇਖੋ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਭਰਮ ਨ ਭੁੱਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ, ਮਨ ਰੱਖੋ ਇਕਠਾਈ। ਬਿਣ ਨਾਭੇ ਸਭ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਬਿਰਤਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ, ਹੰਡੇ ਪਖੰਡ ਜੋਗ ਨ ਪਾਈ। ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਵੈਸੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੋਗ ਪਾਈ। ਤਾ ਤੁਰਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ। ਇਹੋ ਸੰਜੇ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਈ। ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ, ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਿਨ ਸਜਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪੁਲਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰੈਕੁੱਟੀ ਛੋਟੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ। ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਬੜ ਬਾਦ ਵਖਾਣੇ, ਤਿੰਨਾ ਬੋਝ ਨ ਪਾਈ। ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਕਿਸ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਸੋ ਗਤ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਜੇ, ਨਾਭ ਨਭਨ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਮਨਸਾ ਮਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣ, ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ। ਲੋਇਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਸਮਾਦੇ, ਚਿੱਤ ਅਦਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ। ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਹੋਂ ਗੁਰ ਸਲਾਹੀ, ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਨਕੇਕ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਨਾ ਵੋ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲਭ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ। ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਸੰਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਪੂਜ ਚੜਾਈ। ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਵੇ ਸਾ ਪੂਜਾ, ਹੋਵੇ ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਈ। ਬਿਣ ਨਾਵੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਮ ਭੁੱਲੀ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਪੂਜ ਕਰਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੇ, ਪਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਪਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸੰਤੋ, ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਖਾਈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ, ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ। ਪਖੰਡ ਕੀਨੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਗਤ ਮਿਤ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਦਰ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਬਲਾਈ। ਭੈ ਪੰਜਨ ਅਤ ਪਾਪ ਨਿਖੰਜਨ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸਖਾਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਮ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀ ਲੱਤ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਮਿਲ ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੀ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਰਹੋ ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਹੋਵੇ,
ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੇਖ ਕਰੇ ਫਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਤਿੰਨ ਜੂਏ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ, ਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਕਭੀ, ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆਨ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ, ਤਿਸਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਗਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਰ ਜੀਉ ਸਲਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਖੁੱਟ ਸੱਚੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁੱਠ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਲ ਤਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲਾਗੀ ਗਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਆਖਣ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਪੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੇ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਕਾਂਚਨ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਕਾਇਆ ਅਮਰਤ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਖੋਜੇ ਸੋਈ ਪਾਵੇ ਹੋਰ ਫੂਟ ਮੂਏ ਅੰਕਾਰੀ, ਬਾਦੀ ਵਿਨਸੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਤਿਨੇ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸਨੋਂ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਡੋਬ ਮੋਏ ਅੰਕਾਰੀ, ਜਿਚਰ ਅੰਦਰ ਸਾਚ ਤਿਚਰ ਸੇਵਾ ਕੀਚੇ ਜਾਏ ਮਿਲੀਏ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਹਾਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਬਾਰ ਕੁਮਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਵਿੱਠੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਹੀ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਹੀ, ਏਕ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕ ਸਭਾਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਵਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਏ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਈ, ਤਿਸੇ ਸਰੇਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪ ਹੋ ਪਾਏ ਅਲੱਖ ਨ ਲੱਖਣਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਜਵਾਲੇ ਆਪੇ ਤਿਸਨੋ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਈ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ ਆਪੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਸੇ ਬੜ ਪਾਗੇ ਜਿਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਆਪ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਨਿਗੁਰੇ ਅੰਧ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਧ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਵੋ ਆਪ ਭੁਲਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਇਓ ਸੰਤ ਤਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਰ ਤਪਾਵਸ ਵਣਤ ਬਣਾਈ, ਨਿਆਉ ਤਿਸੇ ਕਾ ਹੈ ਸਦ ਸਾਚਾ ਬਿਰਲੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ, ਤਿਸਨੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਤਿਆਵੋ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਤ ਬਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੋ ਜਨ ਸੀਜੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸਰ ਬਠਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਨ, ਕਿਨੇ ਕੀਆ ਪਰਵਿਰਤ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਨੇ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਕਿਨਹੀ ਨੇਵਲ ਪੋਂਗਮ ਸਾਧੇ, ਮੋਏ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਅਰਾਧੇ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਆਨ ਨ ਜਾਣਾ ਬੇਸਾ ਰਹੋ, ਕਿਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਵਣ ਖੰਡ ਪਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਮੌਨ ਅਧੂਤ ਸਦਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿਤੋ ਨਿੰਨ ਭਗਾਤੀ, ਮੋਏ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਓਟ ਲੀਤੀ, ਕਿਨੀ ਕਹਿਆ ਹੋਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਤਜ ਪਹਿਆ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਨੀ ਪਵਨ ਸਭ ਧਰਤੀ ਕਰਿਆ, ਮੋਏ ਦੀਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰ ਭਰਿਆ,
किने कया मैं कुले बढ़ियाई, किने कया वाह बहु पाई, कोई कहे मैं तने पसारा, मोए दीन हर हर अधारा, किने कूकर नृत्य कराई, किनो वर्त नेम माला पाई, किने तिलक गोपी चंदन लाया, मोए दीन हर हर हर त्याया, किने सिद्ध बो चेटक लाए, किने पेक बो थाट बनाए, किने मंत तंत मंत बो खेवा, मोए दीन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यों मंडित, कोई करे अचार सो करणी, मोए दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन ना वे हो मन ना प्रबोदे, कौ नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया, राम कली महला पंजमा, इस पाणी ते जिन तू करया, माटी काले देहरा करया, उक्त जोत ले सुरत प्रीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखण हार संहार जना, सगले छोड़ विचार मना रहो, जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए प्रात सुतहारी, जिन दिए तुद वन तार मीता, तिस ठाकर को रख ले हो चीता, जिन दिया तुद पवना मोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला, जिन दिया तुद पावक वलना, तिस ठाकर की रहो मन सरना, छत्ती अमृत जिन पूजन दिए, अंतर थान ठहरावण को किए, वसुदा दियो वर्तन वलना, तिस ठाकर के चित रख चरना, पेखण को नेत्र सुनन को करण, हस कमावन वासन रसना, चरण चलन को सिर कीनो मेरा, मन तिस ठाकर के पूजो पैरा, अपवृत पवित्र कर जिन तू करया, सगल जोन में तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नहीं सीजे, कार्ज सबरे मन प्रभ त्याई जाए, यहाँ वहाँ एके ओही, जत कत देखिए तत तत तो ही, तिस सेवत मन आलस करे, जिस विसरिय निमख न सरे, हम अपराधी निर्गुण यारे, ना कुछ सेवा ना कर मारे, गुर वोहित बड़ पागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली महला पंजमा, काहू बिहावे रंग रस रूप, काहू बिहावे माए बाप पूत, काहू बिहावे राज मिलख बपारा, संत बिहावे हर नाम धारा, रचना एक बनी सबका एक तनी रहो, काहू बिहावे बेद अरवाद, काहू बिहावे रसना साध, काहू बिहावे लपट संग नारी, संत रचे केवल नाम मुरारी, काहू बिहावे खेलत जुआ, काहू बिहावे अमली हुआ, काहू बिहावे पर दर्ब चोराए, हर जन बिहावे नाम ते आए, काहू बिहावे जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन तार जात बिहाए, संत बिहावे कीर्तन गाए, काहू बिहावे दिन रहन चालत, काहू बिहावे सो पिड़ मालत, काहू बिहावे बाल पढ़ावत, संत बिहावे हर जस गावत, काहू बिहावे नट नाटक निरते, काहू बिहावे जियाए हिरते, काहू बिहावे राज में डरते, संत बिहावे हर जस करते, काहू बिहावे मता मसूरत, काहू बिहावे सेवा जरूरत, काहू बिहावे सोदत जीवत, काहू बिहावे हर जस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नाही को स्याना, कर कृपा जिस देवे नाओ, नानक ताके वल वल जाओ, राम कली महला पंजवा, दावा अगन रहे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जा का नाम सिमरत पहु जाए, तैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखण हार नियाल, जत कत देखो तुम प्रित पाल रहो, जल पीबत ज्यो तिखा मिटंत, तन विकसे ग्रह आवत कंत, लोभी का तन प्राण अधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार, करसाणी ज्यो राखे रखवाला, मात पिता दया ज्यो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखे कंठ लाए, ज्यो अंदले पेखत होए आनंद, गूंगा भक्त गावे बौशांद, पिंगल पर्वत परते पार, हर के नाम सगली उधार, ज्यों पावक संग सीत को नास,
ऐसे प्राशत संत संग विनाश, ज्यों साबण का पर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, ज्यों चक भी सूरज की आस, ज्यों चात्रिक बूंद की प्यास, ज्यों करंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागे प्रीत, दयाल पै ताए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैण लोए, तिस बिन दूजा वरण कोए, परम पै छोटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब समाद, राम कली महला पंजमा, जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी तारणा, यो मन हर के नाम उधारणा रहो, खिन मैं थापो थापे कुदरत सब करते के कारण, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विदारणा, नाम जपत मन निर्मल होवे सोखे सोख गुदारणा, भगत सरन जो आवे प्राणी तिस इहां उहां न हारणा, सुख दूस गई इस मन की विरता तुम ही आगे सारणा, तू दाता सबना जिया का आपन किया पालना, अनक वार कोट जानी ऊपर नानक वंजे वारणा, राम कली महला पंजमा अष्टपदी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दर्शन पेटत पाप सब नासे, हर स्यों दे मिलाई, मेरा गुर परमेसर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दड़ाई, अंते होए सखाई रहो, सखल दुख का डेरा पन्ना संत तोर मुखलाई, पत तुपनीत की खिन पीत रगन देर बंजाई, कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते सरणाई, बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई, एक शब्द लिवलाई, अंधकूप बिख्या ते काढ्यो साच शब्द बण आई, जन्म मरण का सहसा चूका बहुड़ कतू ना ताई, नाम रसायणी हो मन राता अमृत पी तृपताई, संत संग मिल कीर्तन गाया नेचल वस्या जाई, पूरे गुर पूरी मत दीनी हर विनयान न पाई, नाम निदान पाया वड़ पागी नानक नरक न जाई, काल स्याण पुकत न मेरी पूरे गुरु कमाई, जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई, पुत्र कलत्र महा बिख्या में गुर साचे लाए तराई, अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई, साच धर्म का बेड़ा बांध्या पवजल पार पवाई, बेस मार व्यंत स्वामी नानक वल वल जाई, अकाल मूरत झोनी संभो कल अंधकार दीपाई, अंतर जामी जियन का दाता देखत तृप्त गाई, एक अंकार निरंजन निरपो सब जल तल रह समाई, भगत दान भगतां को दीना हर नानक जांचे माई, राम कली महला पंजमा श्लोक। सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक, मुखी उजल सदा सुखी नानक सिमरतेक, मन तन रत राम प्यारे हर प्रेम भगत बण आई, संत सतगुर पेख निभाई संत, हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्णो लाही संतो रहो, खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कह न जाई संतो, चरण कमल स्यो लागो त्याना साचे दर्श समाई संतो, गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त गाई संतो, आत्म राम रव्या सभी अंतर कत आवे कत जाई संतो, आदि जुगादि हैप्पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो, आप बेअंत अंत नी पाइए पूर रया सब ठाई संतो, मीत साजन माल जोवन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो, राम कली महला पंजमा। मन वच कर्म राम नाम चितारी, घूमण केर महात विखड़ी गुरमुख नानक पारी उतारी रहो, अंतर सुखा बाहर सुख हर जप मलन पहे दुष्टारी, जिसते लागे तिने नवारे प्रभ जियो अपनी कृपा तारी, उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महंकारी, साधु संगते हो फल पायक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर न कोई हीणा सब प्रगटी ज्योत तुम्हारी,
तुम समर्थ अगाथ गोचर रवे आए कुमरारी, कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारावारी। नाम दान नानक वड़ई तेरे संता जना रहनारी, राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ते पाया सह सेती मन वजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईया, शब्द ते गावो हरि केरा मन जनी बसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारण। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारण, सब नंगला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावै, नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा धरो साचा।

समूह संगत दे चरणा विच बेनती है कि गुरमुख परिवारों वालों पावन बाणी श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ गुरद्वारा साहब विखे करवाए जा रहे हैं। आओ पावन बाणी श्री सुखमणी साहब जी दे पाठ आरंभ होण लगे हैं। सारी संगत गुरु दरबार विच पहुँच करके